दक्षिण शाय नमगिल्टाशी फुलकने सुंगुर सनाजत कजता रोकिया बानो तंग चपाऊने फुलकने नाजे शरीफ संचेसला फुलेन।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
3: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
2: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्ड्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
4: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
5: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
6: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
5: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
4: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
7: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है। उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में हुरमुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुरमुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
9: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की

0: संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान, मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5,400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेटनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज़ जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honour.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
2: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है. प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की. ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
2: The Prime Minister said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
4: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है. डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी. रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया. इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी.
2: Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Slovakia has filed this report.
5: Several historic decisions with the potential to significantly strengthen India-Slovakia relations were taken during the Prime Minister's visit to Bratislava. 11 MOUs were signed yesterday during Prime Minister Narendra Modi's visit. These agreements are expected to enhance cooperation in areas such as defense, civil nuclear energy, tourism, advanced technologies including quantum communication and artificial intelligence and higher education. During talks between Prime Minister Narendra Modi and Slovak Prime Minister Robert Fico, both sides also decided to establish a joint working group to strengthen cooperation in combating terrorism. Prime Minister Modi will depart from Bratislava today and travel to France to participate in the G7 summit. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
2: Prime Minister Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Our correspondent has filed this report.
6: India's strategic importance for the G7 is increasingly being reflected in concrete economic and technology partnerships. This is evident from the recently concluded India-EU trade agreement as well as initiatives such as Bharat Innovates in Nice and India's role as the official AI partner country at upcoming VivaTech in Paris. These developments underline how G7 countries are looking at India not only as a major market but also as a trusted partner in technology, innovation, manufacturing and resilient supply chains. Significantly, many of the priorities identified by the French G7 presidency, including reducing imbalance, international partnerships and artificial intelligence, closely align with India's strengths and interests. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates from the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre. A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of

0: दसैँ सैँ छिरिङ सान्जिन ताङ टपागुने सल्खने ल दसैँ लुरिक सानाजच ङजे आकाशवाणी लिने जोन्जिक ताङइन स्ङतो छुचोत अर्गु छादुक्क सता तुस्चोत चपिक सिङ नि ल दसैँ नङ नसु सानाजादेन
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

0: ibo akashwani le in kasata ngijaran strict dinamgel ne natul gun sanazat la da sujung az de khangpa tang thum yargas laskung si chors ne gangle sina sdp tang amru 2.0 oi nanglo ga ngulruk sal te sarjing zat khan ti trench chui shungskyo bi chaji guzuk temdel dang ujung na de shis kyon junba vinay kumar saksina zateno aaj yahan
1: nanglo sina amru 2.0 यहाँ एक ट्री ट्रेंच वाटर सोर्स था, हमारा लद्दाख का सबसे पुराना वाटर सोर्स है, स्प्रिंग सोर्स है। उसको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का एक हमने स्कीम बनाया था, वो कंप्लीट हो गया था। तो आज ऑनरेबल एलजी के हाथों इसका इनोग्रेशन हो गया है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लद्दाखी कल्चर में हमारा पानी को कितना रिवर करते हैं, तो एक उसको एक लोगों के लिए एक मॉडल बनेगा। जहाँ जहाँ भी हमारा सोर्स होगा उस सोर्स को प्रोटेक्शन और साफ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। टोटल ये प्रोजेक्ट जो है 5.45 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट था, ये 4.45 करोड़ में हमने बना दिया है। इसका फंडिंग जो है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने किया था, पीएचई लेने इसको 10 महीने में, एक शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको कम्प्लीट कर दिया।
0: dang ladakh si lok nivasika mongolian large tree lakchuk jik echuga jateno shishkyon junba vinay kumar saksena xika dia jatkhan nangjin e lakchuk spo khongra ing to be mongolia jiskore scabs junil de ches archi jaga sangya turje chani lob marcho ngi si skui ringshel rinpoche jalke tingju gi jaga mongolia nanga gyagari skuchaspa atul malerius mongolia mimangsi choksne stemdeli sula lieutenant governor laskuskella pulteno ta lok nivasi ka I changme minga india mongolia friendship tree bortno le jongsi sonam laskun si chosne gunpa gamyulina kvk le tang zungde la khet bachao abhiyan degree me tadik jate agriculture technology management agency nangjin rangjini sabat pe thabs gune ka laglen jachche se skor la chada jato I degree me ट्रिक जचे सेमिगुलर्सो स्टाजी चनी सजिंग भदगे चोचेस सजिंग गुने खमजे ग्याला बोर्चेस तंग चोस्मा तंग केमिकली रिक्स गुने का रगलास्ते मधुगा सजिंग भदगे जचेस खक्चन इनखान स्कोरला शंस्कुल जचेस पोइनो जंसकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये क्यांस्कोर नंगा युद्ध खान नायले डी हर्चोना से नंगा लोबजुंगुन सिर नंगजिन गुजुक संस्थेनो दंग गुजुक स्टेमडेले जात गुएस कब असिस्टेंट प्रोफेसर जंपल चिंगेन इस नायले टी गुते सलखानी डिजिटल लोबजुंग ये श्मिगजी तंग नतो ने इसको ला शादा जातो यंग तेंगसाई तुजला डिजिटल इस्ताल तंग कंप्यूटर ये शेजग्या चमशिक खक्चन इन तेज को ला ठोस थुगा जादिन जिक लोबटू गुनिस नायले टी गुते लोबचन स्नासो से पंतोस गुन लेंचेज ला लबजा साला जातो इना तुजला कॉलेज लोबची डॉक्टर एमजाद अलीज युलजों से नंगा नायले डी अर्चुनास चुकचे से फिया कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये चोक्स ने बर्चुन जातखान तंग ई अर्चुनास ये गोजदुम खक्चन युद्धखान इसको ला शादा जातो यंग कौन इस ई अर्चुनास चुकचे से थोगा रुक्स जचेस पा युन्तान इसको ये चोंची नायले ले निस्तुन पा तंग जंस्कार नंगा युद्धखान सिविल सोसाइटी चोसपा गुनला थुजे छे युआ जातो तेना चोगला इतुस नायले डी फैकल्टी मेंबर निमा ड्रुलमास ई अर्चुनासी का जिंदा गुन सिर नांग जिन गुजुक सोंगते इन खान तंग लोपटू गुन मा ना मा इवे नांगा थुशेज ला जुआ पुला जातो लद्दाख ने हाच नजर ला स्क्योत खान मिंदार ग्यान अजीबचू जबजी चान इस दे निस्पा खमजांग तंग यंपो खचू ला लोग से लेपते नो खोंगुन श्रीनगर ग्यालची इल्दानी नमचू थाए का लेबा चिक लद्दाख उजुंग आज दे हाच कमिटी ठिपा गोलम अब्बास अबीदी चोस पे कमिटी थुजमी गुनिस लुक्शुल नांगजिन अर्गसुजुआ जातो इना तुजला हज कमिटी छोस ने छोसी गोस्क्यों गुन लमस्तुन चोखन गुन तंग रंगथा दिचुला छगला जतखन संगमे नजजाल पा गुनला रोग्रम थरकेल जचेस पा थुरजे छे युआ जातो लद्दाख नांग सोस पोमो यनला ये छोस ने दंग ले तंग ये कोरे नासा सोसे नंगा रियो संगचो दे स्कुरिम्स डुबा जाते नो खेनपो दुर्जे ठिनले लपस्तोने नंगा खरदोंगला गंगलेस गुनपा चोखांग एसएसबी गुनपा तंग धर्मा सेंटर गुने का रियो संगचो तंग कोंसा लमी नाम ट्रेन गेलवांग थमचात खेनचिन जिक्सपा छेम्पो छो स्कु स्कुखम जंगपो लुशेस तंग स्कुसेस कालग्यार तंचे सिपिया ड्रोलमा सकडुब जाते नो यंग निशुर ग्यात रगु तंग नमगा इजाक गुन लद्दाख से यूंग सी डिस्की दे पिया डिस्की छाली गुनपे नंग आसमुल्लम सोसा जाते नो محرم نما لبن یوت خان با ازیک تے میونسپل کمیٹی کارگل چوسنے موٹر کھولو پیا پارکنگ الجوغ دمو چوچیس تنگ ٹریفک سرکار دمو چوچیس فیا اولڈ ہاسپٹل روڈی بس ٹین نے اپر چنگچک چکپا گیلامی تھاتو تھما نے سرو پکرو کن تھنچے سے لزگل جک اشولا جاتینو کارگل جونس پن جون بادشاد جات خان نانگزین ای لزگل بو کارگل ٹھوم سے نانگا پارکنگ کلاس یوت خان گن سیلچیس تنگ سرکولر سرکولر روڈ لا پھل پھنگچیس نے موٹر کھورلے چھنسکا چھا میچوک چیسی برسون انوک ملاجا اناؤ تنگ پو آکاشوانی لینے اس کا تو نسل گن تھون

दक्षिण शाही गोपी फिल्म लू सनाजत कसताई सिंह ने लता मंगेशकर तंग मोहम्मद रफी इसके सलखनी चोर मचाए शोर फिल्म लू सज्जस लपुलिन लूर सुमखन नो इंद्रजीत सिंह तुलसी यंग लुयंग श्रीखन रविंद्र जैन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझ कर उठा

0: लिया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said the vessel is expected to arrive at Dahej in Gujarat on the 18th of this month. Government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi at the national level today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the initiative reimagines youth engagement with democratic processes, offering young citizens a hands-on understanding of governance, policy deliberation and parliamentary functioning. A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California's Mojave Desert last night, killing all 8 people aboard. Aerial footage showed a plume of black smoke rising from the desert near the

0: runway on the base. It is not immediately clear what caused the crash. Domestic benchmark equity indices, Sensex and Nifty, opened higher this morning following a preliminary agreement between United States and Iran to end the West Asia conflict. Sensex rose over 315 points to touch 76,579 in early trade, while Nifty gained around 77 points to trade at 23,931. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde makes its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Cape Verde's 40-year-old keeper, Wozinia, delivered a heroic performance. Cape Verde have produced the biggest shock of the tournament so far. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एव्यू में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एव्यों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायन अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। G7 शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो हर साल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जैसे G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए आयोजित किया जाता है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही।
3: प्रधानमंत्री की ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनसे भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कल 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उम्मीद है कि इन समझौतों से रक्षा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, पर्यटन, क्वांटम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। स्लोवाक रिपब्लिक के ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम्पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तरल प्राकृतिक गैस LNG ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम इसका प्रबंधक है।
4: अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। इस जहाज के 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की आशा है। अब तक भारतीय ध्वज वाले 10 और विदेशी ध्वज वाले 5 जहाज इस जलमार्ग को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन महानिदेशालय के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, जहाजरानी कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमले शुरू होने के बाद यह रणनीतिक जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्रीय जलमार्ग बाधित हो गया। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
1: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग भी बदल दिया गया। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: फीफा विश्व कप में केप वर्डी की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डी के गोलकीपर वोजिना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। न्यूजीलैंड और ईरान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वाथा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वाथा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विश्व में वेदांत और योग की शिक्षाओं का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित आयोजित विश्व धर्म सभा में उनके ऐतिहासिक संबोधन के लिए जाना जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एव्यू में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बमवर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डी की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो लीजिए, पहला ही ईमेल हमें मिल गया है गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें मिला है। कोई भी गीत, ये इन्होंने लिखकर भेजा है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई का संदेश हमें मिला है। ये जंगली फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो ये रहा फिल्म जंगली से प्यारा सा गीत।

जनाबे आली, आपकी संदेश, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारी तरफ से राम राम स्वीकार करें, प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद आ रहा है। ये हमें लिखकर भेजा है आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज जी ने। वेद प्रकाश चौहान इनके साथ हैं, सुखबेर सूबेदार अमर सिंह जी भी इनके साथ हैं। अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरजिंदर शिंदा जी हैं पंजाब से, गांव नथाना पंजाब से। हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, और खुश रहो खुशियां बांटो, ये इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। इसके अलावा संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, ये पिंगावाला चौक गुरैया जलंधर से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। ये कौन है? ये है शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, ये सब गांव जाखौद राजस्थान से अपना संदेश हमें भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारे प्यारे से संदेश हमें मिल रहे हैं। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला, और ये गाना सुनना चाहते हैं। ये

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और बिनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: दशमलव 1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ हूँ। और हमारे साथ हैं इस वक्त मेल के जरिए राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारू जटोलिया, दिल्ली नांगलोई से इनका संदेश हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। DK हैं ये, DK कौन है? कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु, और नई दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। अपनी पसंद का गीत इन्होंने लिंक कर हमें भेजा है। कोशिश करेंगे हम आपका गीत सुनवाने की। हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा है, मोनी कांगड़ा है, प्रिंस बोट है, सीताराम कांगड़ा है, साहिल कांगड़ा है, इनका भी संदेश हमें मिला है। और कदमा जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, इनका संदेश आया है। हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है। जी हाँ, गायक और संगीतकार हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष पर फिल्म शर्त का ये गीत, ये सुनने की शर्त रख रहे हैं, मतलब इच्छा जता रहे हैं। तो ये हमने आपकी इच्छा पूर्ण कर दी। ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर।

दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है आपका। भूषण खेड़ा जी का हमारे पास संदेश आया है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सब कुछ लेकर भेजा है इन्होंने फाजिलका पंजाब से। ये खेड़ा परिवार पूरा हमारे साथ जुड़ा है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, और अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। इसके अलावा हमारे साथ फागुराम यादव जी जुड़े हैं, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संभलपुर कांकेर से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और कौन है जो हमारे साथ जुड़े हैं? अनिल मोहन जी जुड़े हुए हैं, टिल्लू नायक है, उषा मोहन है, मधु नायक है, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है। डीकेपी परिहार जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और नमस्कार इन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपालगढ़ राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। और इसके अलावा सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग जी का संदेश हमें मिला है, और गाना सुनना चाहते हैं ये।

ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से हमें प्रवीण हागुणे, योगिता हागुणे, कुमारी प्रियाली हागुणे, पार्थ हागुणे और पूरा हागुणे परिवार से संदेश मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये महाराष्ट्र से हमें संदेश मिला है। अगला संदेश है ये कहाँ से आया, एक मिनट इसे देखते हैं। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही साहब हैं, शाहीन फातिमा हैं, अनु खान हैं, अदनान खान हैं, फैजान खान हैं, प्यार भरा आदाब इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, आपको भी आदाब। इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़े हैं, तुलसी मस्कीन साहब हैं, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, वीना मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से, नहीं ये तो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने ही हमें नीचे लिखकर भेजा है, चंडीगढ़ से। इनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशव रिधान खुराना, यानी वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं कि हम 30 साल पुराने श्रोता हैं, कोई नाराजगी, अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं। अरे रिस्पांस मिल तो गया, क्यों इतनी नाराजगी, हम क्यों आपसे नाराज होंगे, हम तो खुश हैं आपका संदेश पढ़ के। अरविंद कुमार, गुड़िया रानी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेरी पट्टी, मधुबनी बिहार से इनका संदेश मिला है और ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म अनीता से, ये

इसी के साथ दिल का मेल बॉक्स यहीं पर मुझे संपन्न करना होगा, लेकिन 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of the United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
3: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Ahead of the re-examination of National Entrance Cum Eligibility Test NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency NTA has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said that the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. He said democracy has remained an integral part of the country's work culture and thought process. The Lok Sabha speaker said that active and inclusive participation in democracy is essential for shaping the nation's future and achieving the goal of a developed India. In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. Captain and player of the match Salima Tete and Lalremsi Ami netted the goals for India, while Hiramitsu Ai was the lone goal scorer for Japan. And in the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde, making its historic first appearance in the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweights Spain.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार आपको एक नई जगह घुमाने ले जाने की कोशिश करते हैं रेडियो तरंगों के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज हम जहां जा रहे हैं वो है कर्नाटक का एक छोटा सा तटीय शहर गोकर्ण, एक छिपा हुआ रत्न जहां आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों मिलते हैं।

गोकर्ण के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक है यहाँ पर ओम बीच। और इस ओम बीच का नाम कैसे पड़ा? इसके आकार से, शुभ ओम चिन्ह से मिलता जुलता है इस समुद्र तट का आकार, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ओम बीच। सुनहरी रेत का ये जो किनारा है, खूबसूरत मनोरम किनारा, ये देखने में तो बेहद खूबसूरत है ही, लेकिन जल क्रीड़ा प्रेमियों के लिए भी प्रमुख केंद्र है। यानी कि देखने में खूबसूरत है, सुनहरी रेत है यहाँ पर, इसके अलावा आप यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जल क्रीड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके साथ कोई एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ये सब करते हुए, मतलब सब चीजों का आनंद लेते हुए, आप पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड जैसी गतिविधियों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बहुत खूबसूरत है यहाँ का मौसम भी। आप सोचिए कि खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी किरणें जो है वो रेत पर भी पड़ रही हैं, चमकीला रेत और नीला नीला पानी दोनों आपके पास हैं, तो फिर क्यों ना आप ऐसे मौसम में, ऐसी फजा में खो जाएंगे।

गोकर्ण का महाबलेश्वर मंदिर ये भी देखने लोग दूर दूर से आते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ गर्भगृह में आत्मलिंग स्थापित है जो पूजनीय है, और ये आत्मलिंग चुंबक की तरह अपने भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है। और दूसरा कारण है यहाँ की द्रविड़ वास्तुकला जो इस मंदिर को और भी खास बनाती है। महाबलेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ का कुडली बीच भी लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे शांत वातावरण की तलाश करने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर खास है यहाँ नारियल के पेड़ों से घिरा सुनहरी मुलायम रेत से सराबोर कुडली बीच। जी हाँ, खासियत मतलब अगर शब्दों में हम बयां करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। नारियल के पेड़ हैं चारों तरफ और बीच में सुनहरी रेत है। ये कैसे कहें, इसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है। एक अलग तरह का एहसास है जो यहाँ पहुंचकर ही आपको महसूस होगा। जब आप सुनहरी रेत पर लेटकर ऊपर की ओर देखेंगे ना आसमान की तरफ, और बीच में आपको वो नारियल के पेड़ जो है वो नारियल से भरे हुए दिखाई देंगे, तो एक अलग तरह की अनुभूति होती है। और यहाँ पर ना सूर्यास्त देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बीच पर कई तरह की छोटी बड़ी दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए सामान मिल जाएगा, आपको पेय पदार्थ मिल जाएंगे। तो उनको पीते हुए आराम से बीच पर लेटिए और आनंद लीजिए। और हाँ, सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब आप अकेले ना हो, आपका अपना आपके साथ हो।

0: की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: .1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, मैं हूँ आपके साथ भावना, और आज हम रेडियो तस्वीर बना रहे हैं कर्नाटक के खूबसूरत तटीय शहर गोकर्ण की। खूबसूरत नजारे, इतने खूबसूरत कि आंखों में बस जाएं, दिल में उतर जाएं।

आप भी बात मानिए और हाफ मून बीच जरूर पहुंच जाइए अगर आप इस वक्त यहाँ हैं गोकर्ण में कर्नाटक के, क्योंकि पता है ओम बीच जिसको हमने शुरू में ही आपको बताया था, वहां से पैदल चलकर ही हाफ मून बीच जो है पहुंचा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, हरे भरे पेड़ जो हैं वो यहाँ की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। बहुत ही मनमोहक सी जगह है ये, एकांत शांत, और पता है जो भी शांति चाहते हैं एकदम कि शांत सा बीच हो, चहल पहल ना हो एकदम, वो यहाँ आते हैं। और इसका जो आकार है ना वो आपको पता ही चल गया, जैसे हाफ मून मतलब अर्ध चंद्राकार, ये आकार है। एक ओम बीच जो हमने शुरुआत में बताया था उसका जो आकार है वो ओम की शेप में है, और इस बीच का जो आकार है वो अर्धचंद्रा आकार है। इसके अलावा गोकर्ण का इसी नाम से गोकर्ण बीच जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, बेदाग सुंदरता है यहाँ की, और यहाँ पर भी शांत वातावरण है, भीड़भाड़ से दूर शांति। और यहाँ की खास बात, यहाँ की जब लहरें उठती हैं बैठती हैं, मतलब लहरों का उठान और बिठाव ये दोनों जब एक साथ मतलब होती हैं, जो आवाज जो ध्वनि निकलती है उसको बैठकर आराम से यहाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा। कुछ ऐसा कि बस अब यहीं रुक जाएं, थोड़ी देर कहीं भी ना जाएं, यही समुद्र की लहरों की आवाजों के बीच अपने आप को खो दें और यहीं पर रहें, कहीं ना जाएं, कहीं भी नहीं।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: मम्मी ये जहाज कहाँ जा रहा है?
8: बेटा अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
9: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
8: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
9: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

बहुत ही खूबसूरत है गोकर्ण, और यहाँ की हर चीज, यहाँ का नाम भी खास है और यहाँ का हर काम भी है खास। यहाँ का पैराडाइज बीच जो है ना, हमने दो तरह के बीच आपको इससे पहले जो बताए, ओम बीच और हाफ मून बीच। तो हाफ मून बीच से बोट के जरिए, नाव के जरिए, और ओम बीच से घने जंगलों से होते हुए आप यहाँ पैराडाइज बीच पे पहुंच सकते हैं, और बिल्कुल स्वर्ग के समान है ये बीच। कवाला केव्स हैं, ये प्राचीन चूना पत्थर की गुफाएं हैं, लाखों साल पहले ये बनी थी, और भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र स्थल के रूप में इसे पूजा जाता है। यहाँ पर भी लोग आते हैं। कोटी तीर्थ एक जगह है, हजारों झरने जिसका मतलब होता है, और यहाँ पर चिंतन मनन करने लोग आते हैं। ये आर्टिफिशियल तालाब है, मानव निर्मित है, और मंदिरों और प्राचीन इमारतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोग अनुष्ठान करते हैं और इस तीर्थ में डुबकी भी लगाते हैं। निर्वाणा बीच भी बहुत खूबसूरत है गोकर्ण का, और यहाँ का भद्रकाली मंदिर, इसके तो क्या ही कहने। भद्रकाली मंदिर जो है, मतलब जो नकारात्मक ऊर्जा है उनसे बचाता है। माँ भद्रकाली की प्रतिमा है यहाँ पर, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही खास ये जगह मानी जाती है भक्तों के लिए। तो अब आप ये बताइए कि आप कब मन बना रहे हैं यहाँ आने का?

0: आज की तस्वीर आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। गोकर्ण की ये यात्रा आपके मन को भाई होगी। 12:10 पर घर आंगन होगा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। मैं भावना चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दक्षिण एशियाई आकाशवाणी दिल्ली ने FM गोल्ड डिग्री गुण सनाजाच मीडियम वेव किलो हर्ट्ज 6 नाम मीटर्स निपग्या गैचू गैपची तंग शुजुर्गु यंग FM मेगा हर्ट्स ग्यातंग चिक तंग शुजुर्ची का मजे आकाशवाणी लेने शुवत निमी चुसो चुंगिस छादु कासता चुंगिस तंगफेत सुखपा फेमेलोरिक सनाजात इनास्कुन ला करण अर्जुन फेमेलो कुमार सानु तंग अलकयाग्निक

कसत उदित नारायण तंग अलक अग्नि सलखनी राजा फिमेलुबसनजत समीर सोमसला यंगस्टेक खन नदीम श्रवण

फैमिली डिग्री मिस थिंग जुक पे का सता मुझसे दोस्ती करोगे फैमिलू लता मंगेशकर तंग सोनू निगम ने सुना था अनंत बख्शीर सोमखानी लुआ लुआंस डेखन राहुल शर्मा

0: आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
1: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
1: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए NCERT की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
0: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
1: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
0: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओं, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फोमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं? जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।

0: तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आएं, तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों।
1: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
3: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
4: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
3: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
4: यस।
2: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
2: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
5: सू
3: जी,
5: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ।
5: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
5: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
2: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 14
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
6: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
6: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
2: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
6: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
6: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
6: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
6: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
6: सू, Only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
6: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
6: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ।
6: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
6: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
6: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
6: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
6: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी।
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
2: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से

0: ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है।

0: सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
1: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
2: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही मिस्टर बेरमैन।
1: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
2: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।

0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस।
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया,
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ
1: मास्टरपीस,
0: हाँ
1: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: दक्षिणी जराई NCERT चिंता जत्कनी डिग्री उमंग सनजात्स।

0: साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फ्रित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार है देव कोहली और संगीतकार है राजेश रोशन।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

लीजिए, सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, जब वी मेट फिल्म से। इरशाद कमली के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आप सुनते हैं नीरज श्रीधर को तुम मिले फिल्म में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रहे थे जावेद अली की आवाज़ में जोधा अकबर फिल्म से गीत। अगला गीत लीजिए, सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में खाके फिल्म से गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है रम संपल ने।

अभी आपने सुना जोश फिल्म से गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। कार्यक्रम में अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में तेरे नाम फिल्म से। इस गीतकार है समीर और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाई सुनेंगे परदेस फिल्म से गीत कुमार सानू की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: म्हजी आकाशवाणीले निश्वत निमी चुचो चिकतांस करमांगा चुछा दुख कसता तुचो चबिगिस तिंगने आकाशवाणी दिली ने स्मुल्ला उर्दू ना नचुल चुचो निसे का मिड डे न्यूज तांग निस तांस करमा चोए का दोपहर समाचार सनाजात
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के शहर एविया में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी नुमाइश की सताइश की है और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में आर्ट और कल्चर के रोल पर जोर दिया है। सरकार ने नीट UG के दोबारा इम्तिहान से कबल टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक पाबंदी आयद की है, जबकि मैसेज एडिट करने की सहूलत 30 जून तक मौतल रहेगी। खांसी की रोकथाम के सिर्फ लाइसेंस वाले दवा फरोश ही फरोख्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस दरखास्त पर मरकज और रियासतों से जवाब तलब किए हैं जिसमें आधार को सिर्फ शिनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की अपील की गई है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सिर्फ गैर मुस्तकिल सीटों की तौसी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इस तरह की इस्लाहात को नाकामी के मुतरादिफ करार दिया है। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत जापान को 1-1 मुकाबले 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है।

0: holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent Ankit Kumar, who is joining us from Evian. He will bring us the latest update on the G7 developments. Ankit? Many G7 economies are facing slower growth and demographic challenges. How would you say the partnership with India would help unlock new opportunities in manufacturing, innovation and services?
1: Yes, Valsa, you rightly pointed out about the shifting global dynamics. See, when we look at the G7 economies today, many are actually grappling with aging populations and acute labor shortages. While partnering with India offers a direct and dynamic solution to them, India brings a massive, young, and highly skilled talent pool that is increasingly integrating into global tech and services sector.
0: Right.
1: But the partnership goes far beyond just human capital. If you see newly adopted global tech and services, newly adopted India-France Innovation Roadmap 2030, the G7 bloc no longer views India merely as the vast consumer market. Instead, India has emerged as a critical, trusted partner for building resilient global supply chain and advancing manufacturing. Valsa.
0: Right, and as artificial intelligence becomes central to economic growth, how can India's DPI ecosystem serve as a foundation for responsible and inclusive AI development?
1: Absolutely, Valsa. See, the convergence of digital public infrastructure and artificial intelligence is truly the next frontier of inclusive development. You know, unlike closed proprietary platforms, India built its digital architecture like Aadhaar and UPI as a public good, designing it for population scale and inclusion right from day one. When you integrate AI into this framework, India's interoperable DPI provides the diverse, high-quality and consent-based data sets that required to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate adversaries to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good. Yes, Valsa.
0: Right, Ankit, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Evian. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.
2: Thursday morning, the Prime Minister is scheduled to hold meeting with leading chief executive officers, with discussions expected to continue till the afternoon. Later, he will participate in the Vivatech Summit, one of Europe's leading technology and innovation events, where he is expected to deliver an address. In the evening, Prime Minister will attend a community event and interact with members of the Indian diaspora. The program will also feature cultural performances, showcasing India's rich heritage and strengthening people-to-people ties between India and France. Mahesh Sobre, Akashwani News, Paris, France.
0: Moving on, Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said, despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha Speaker said that India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the Youth Parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said the government is committed to building next generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the ministry on a proposed Middle East-India deep water pipeline. In a statement, the ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep-sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East-India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test, NETUG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEETUG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
3: The Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sales licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: The special investigation team SIT constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
4: Reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month ahead of NEET UG retest. Message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
5: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
6: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
5: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
6: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
5: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक सिवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
7: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
5: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
4: UNSC reform would be grossly inadequate.
8: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे
4: हैं।
5: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मजे आकाशवाणी लेने जोतनीसू कसा लुरिक संचस लपुल इनास्गोन ला सिरिंग डोल में सलकने इलुबो सनाजात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ यस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल

0: zangpon mangyam salak tening eje taron tening ata jip takla manena tening ata la tus topkan nang jin tening ata rang rang so so shkyo te tening ata jibu nga ta taga zad rang lju tata kazu shi dusku jab sirin norges le tang ata I jibu nang lju tang ata nga pe torne indo ya nga ta kazu nga ta tue torne ata jib kazu shi taga dnang jingbat pao la tening tebega nga ta rang bos po chikpo shkyo te noa ya ma nga ta yu tsos nga mpeo nga ta taks te tebega nga ta yungwang spela nyan tenang lju ta
1: kasi minim ta taksa nga mpe taksa nga ta yali yungwang spela nyan to minam ne ये जुनाले तनेगाता लेंगुलना दक्सा फेस गंपे गाता केलोरी के ता तीन दिक चोंगनाले हलम स्टोन ता टॉपसन रो दक्सा नास प्लस तीन ना स्टोन केरो गाले जी प्लो ता तेसा मा टॉपसन रोले कासा
0: कासा तिंगेरा रा तो कजु शुड लगले बोगने जु तिंगेरा यांग इंगेरा यांग मान बत्ते गान पे चोसनेरा थाक्स तिंगेरा चोंगा जादा दा यमन इंगेरा रंग बोस छपमन बादा
1: जादा ता दक्सा मिनम ले ता अंगना रंग बोस बो मने मना चोंगसे दे जुक मना कोशिश मेन मिनम ले नक्सा गान पे जकन मंगा ता रिंचन दुक पयाले रिंचन सोंग मा सना तने ना सिंगना रंग बोस छे दियाले दो सोंगसे गान पे थाक्स दक्सा गा ता इदना ओ यांग हम पे ओ मारे कोले पा मिनम ले
0: кёджу тенингера казу шижинус кюжапса тиринур кезле таңата ханме циркан нанжин ата сасунам баче шигиндо гапса сасче шигиндо яманан ата тене чисанер гужин ата тене безза тен ата сасунам жи бада чектен потен меген ата тене жангбус ма ата гелаш кюдат кягона жо таңса ата тене дембар тенингера жукер нанжин тене ата халан силин шени ми цишкет па таңата юнго ва сен ата будго ма алик зыздгоне кюта сангера тене казу шижин таңата ицола безза тен ата сасунам ун ата бада затна тен ата казу
1: ताड़कसांग तां मंग चाह मेरा मिले आत गवर्नमेंट राशन जी आगे तां खार तांग से दुख सुनोगले उसके पास ना थोड़ा सी की राशन मुबान चाना तेरे का तां चीज़ हो से दुख मेरा मिले तेरे ना नास पिका आगे तां जिंबात पीना लेप्चेस बस दोसिंग ना थों नु गया ले मंग चाह तेरे ना जिंबात पु बाद है मैंने सा सुनाम बाद ना आगे तां गया ले तो सी थों से आज मैंने यंग मा ठेल बेग ना आगे तां चंग हाल अस्पेक्ट थों मिलू मैडम ने दांग दिन नो नो नो मंग ना इजुक शान दुगले बात पु चीज जैसे ना ले श्योल बो काओ जैसे श्योल बोला थों चुंग मनो गया ले थों चुंग बो जो गंग मना शेष का स्पो थों दो बता ले श्योल बो चीज जैसे ना उदी सिंह सिंह बो चीज जैसे जिस कान बोले श्योल बो क्यों तो ना कैसी मुख जोन से बदांग ने चुंग ने ले तेना तो लांग ता मिसे जा तो कास गन में गंटी मुंह ता जात गोशे तो संगमा खक्षण दुख समरंग ना ले
0: तेने इसको जब सिंह नोर के सिंह इलाका जो शिशुन तेने आता यंग संकल लंग या जिंग बात लगूं ला तेने आता डोनस चीजी का ता रंग रंग सोसे ना तेरा साचु पाप संस्तुन तेने आता लगलें ज़्यादा दिन ऑन ले जो तो आता तेने रंग बोस सपिंग मा बोरा ऑन ले जो ते उपन आता यंग बोस पिल चीजी ज़्यादा ना कजु शिक्षित ऑन ले जो
1: कासा दो ता माने गेलास के चलो मेरा ने ता स्क्यूट पसन ना ता देना चोला जंग योंगो मेन बाते ना चोला यंग योंगो स्पेशल जा स्क्यूट ना मा गेलास के चलो वाले दांग दिने ता योंगो मेत ना तेने ता ला सिक्चो से मापन भाले योंगो ता ता गा जुंग जिक ना इन गोस ना ता को दीप्ति के कानी ना राना देना आजु पाले तने थोबी तोपता मा ता थोबिन छनो स्क्यूट पसन ना इन ना चोगुन ला यंग चुबो मु ना बले आमाले उन ला आजु खतर एक साले तेने ता लास पमा शो शेस पमा पंतो सिक ना थोंग दु खाले
0: तेने इसको जब सिंग नोरगेसले तेने गेरा लिकिर गमुलेश क्यो दजते गेरा थोंगम सता यंगमा बच्चे सिना कजुशियत मालदेमो तंग जेबसल चस्ते मोलजत गेरा इकेश के चला तुजे छे
1: जुले
0: सनकलंगेस दसंगे जरे टिवटिलन बंसन जत इन नतंगेमपो दिरिजिंग पे सुस्का दे डिग्री मेकना नि गोंस पा जुन जुले
2: ई डिग्री बो निजे लंगेस ला गेवा जुई सोना मेस्कोरे लोनकुसी चिंदा जते सनचेस ला फुलटेन पिन

Dar sang jiran jing pe sungs ka digrim sana zats. Digrim pul kanin pin hasina bano yang digrim kodik zat kanin pin sonamang jo. Medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur FM 101.1 megahertz par hum Akashvani le se bol rahe hain. प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

जय हिंद फौज भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत से

अभी आप सुन रहे थे मोहरा फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे बीजू शाह। आइए अगला गीत हम सुनते हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है राहुल शर्मा ने।

अभी आप सुन रहे थे इश्क विश्क फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे अनु मलिक। आइए अगला गीत हम सुनते हैं पमीला जैन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में वीवा फिल्म से। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन।

0: ngaji akashwani lene jinjik tain to so chapis thing ne ladakh sana na sultan delcha chana sat
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।
2: सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख नंगा निस्तुंग निशुर सरुक निशुर सब्दुन एकेडमिक सेशन एपिया एडमिशन गोजुक सोंगतनो लोपथुक गुने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंगा जान तंग मेटावे थथलिंग नंगशिन लोपजुंग गुन लेन थुपचिस यतनो इनंगा एमटेक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी एमए पब्लिक पॉलिसी बुद्धिस्ट स्टडीज एमएससी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन टिबेटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड मेडिटेशन टेक्निक लोपजुंग सालचिसनो लोपथुक गुनला Lopox UGC Nangshin Topjisinok, Gate Tang CUET, Yangjan Competitive Ryukskun Lengos Metmanok, UGC Teams Nangshin, Program Redenanga Loptuk Jipju Lenchisinok, MTech Tang MSc Program Gun, IIT Madras Tang, IIT Kanpur Gute Topjisinok, Yang MA Program Gun, Sindhu Central University Kalacheka Topjisinok, Tene Loptukune, Sham Jongse Kalache Zertang Ekayotkan, Sindhu Central University Nanga Admission Lenajat.

0: ebo akashwani lein kasatangi jirangi setanta shine shna su sanazat shidlon narendra modi uthidina nga butkhani lo chungi se rings la yarkya se la sir transport lus khan gun tang delte lena nga viksit bharat sankalp conclave so sada tena lada khujung azde shikhong jon bas lena nga so jungi skelden laska khalon po jon batang thu jate yuljong sil dani zue yarkya kun score la trozdur jate nu yang zamling shi dani yo ge jak tang delte lada se yul khak so sena nga degrims na so shigi tadik zanjik tano kasata shnasulgun ijib sal jate sanajat shidlon narendar modi uti dinanga sojungi chosne butkhani lu chugni si rings la yerge si lersir transport shulkan guntang delte lenanga viksit bharat sankalp kanklep aso sa jate no itu sojungi skelden laska galon position ba harsh malhotra skundor se chula tu jata no yang butkhani lu chugni si rings la nda jungshul rings la lersir transport luskan guni skor la shada jat
1: 200 से अधिक जन कल्याण की गरीब कल्याण की योजनाओं को बनाया और उनको मूर्त रूप दिया, चाहे उसमें 18,000 गांव में जब 2014 में उन्होंने टेक ओवर किया था तो बिजली नहीं थी, अगले 4 साल में सब 18,000 गांव में बिजली दी और उसके अगले 3-4 साल के अंदर हर घर में उस गांव के लाइट जलाई, बल्ब जलाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल आता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन माताओं बहनों के लिए उन्होंने जीना आसान किया है और 12 करोड़ माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया है और 12 करोड़ से अधिक शौचालय सम्मान घर निर्मित करके माताओं बहनों को समर्पित किए, चाहे गांव के घरों में या सार्वजनिक स्थानों। जनधन योजना के माध्यम से 0 पैसा जमा करा करके अकाउंट खोल सकती थी हमारी गरीब बहन, हमारा गरीब भाई, और उसको किसी के गारंटी की या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जन के लिए काम किया।
0: लद्दाख उजुंग अजदेर शिशकोंग जोन बा वी के सक्सेनास लेनांग आर सुजुंग इर गेलम तांस केलेन लस्का खलोन पो जोन बा हर्ष मल्होत्रा तांतु जाते यूटी लद्दाख से नंगार गेलम सर्जेंस तांग देलते इल्दानी जुए छर्जी सो से स्कोर ला ट्रोस दुर जाते नो शिशकोंग जोन बा अर शिशोक्स पेलम एक्स रग्यू ते शेता दत खन्नां शिन ई छर्जी गुन ग्यू ते यूजों से नंगा स्कोर यांग ला यर्गेस मा छाचेस तांग मीमांस कुन ला सेपी दिस कप्स मा थोपचे सी रेवा उन चो जाते नो श्याम अर्जों नंग सकेत लस्कुंस तंग रेलते लसिर गुनिस के जिब जाचे ला अर्जों स्पुन कुंजिस अंगमुस एसडीएम तंग जन डेलो लस्कुंस सो से स्पुन बगन तंग यंपो सोस पाजिक बदा जाते नोक सोस पे रिंग्स ला एसडीएम मोहम्मद शरीफ तंग तहसीलदार तनवीर अहमद गुनिस अर्जों नंग सकेत दिथो गुन डिजिटाइजेशन जाचे थे ते लसिर नासोक सडुलिन यत खान गुनिस कोरला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अर्ग्यू ते इशारा जाते नोक लेर जों तुदुर गुस्पे लस्कुंस तंग उत्तर प्रदेश सी आईसीएआर Central Institute of Research on Cattle Nisque Zungdela Ladakh si Tudur Shashkyong Zatkhan Gunla Hagos Pelche si Degrim Tangyampo Orgozdo Michalak Rikas Gosta Saltenok Tribal Subplan Degrim Nangloga Talik Zatkhan E. Zatgwe Skabs Ujung Ngazde Tudur Gyuspel Laskung Singheston Pa Dr. Mohammad Ismail Tang CIRC Chantrix Pargan Pa Dr. Naresh Prasad Thete Laskung Si Sponbogun Ejukstet Penjerok Etus Tudur Shashkyong Zatkhan Gunla Nime Shuksika Omar Shokches Logot tang tudo gunni fia chagrigang usgoste salazateno dang yangna junitses chongi jaga shenang yot khan skunas kyot khan gunni jukse rsona seka world elder abuse awareness day yangna jamling shil danika skunas kyot khan gunla mius pa chen yot khan gun usgakse si skorla hagos pelche si jakse dateno etus helpage india chosne yuligel ka kasosenanga skunas kyot khan gunla namle phogyur chulok tang Sat Mangpur Geshis Tetir Gutsan Snasok Shigeste, Kalas Junior Khan Guni, Skor Gun Loknyan Chun Gute Zigra Pula Zatenok Itus, University of Ladakh Vice Chancellor, Professor Saket Kujvahas Kundon Sotang, Janyang Skundon Paguni Toa, WWAV Senior Project Officer Rigzin Dawa, Shis Pandelas Kungsi Tuzmitang, She Goba Skarmatsring Tete, Mimans Organjon Mangpojik Juxtetinjerok. Viksit Bharat वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन नंगलो गा लद्दाख सी ससम सी गमयुर कुनि नंगा डिग्रीम्स ना सोख सिगि तलिक जदिनि खानबो जदगु जिक तंगयाम पो जुग जदा तेनोक ई डिग्री मी रिंग्स ला ग्यागारे खाक सोसो ने जुनु गुनि जदे जिक लद्दाख सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन नंगलो गा लेंति खान गमयुर सोसेल तापस्कोर ला ख्यों गा जातेन पिन यांग लद्दाख सी ससम सी गमयुर कुनि नंगा मिमांग सी मिछे फुतांग सी छिरका गुन साजी छक्सुल तंग युलजों सी शेरिक लुक्रोन गुलि स्कोर ला शेजग्या अस्पेला जातेन पिन डिग्री मी जुग जुई जदगु Cups, My Bharat Ladakh Ngyes Tonpa Tajamul Ara IDBP Sponbo Guntang My Bharat Di Lashir Pagun Tuzazat Enok Itu Skundon Pagunis Sungsha Challenging Yuli Junupomo Gunla Gyagari Satsamstang Satsamsing Ngekor La Hashnas Diotkan Mimang Skuni Skorla Hagutang Shizgya Yung Goshes Kakchan Inkani Skorla Shadazat Enok Yang Tap Skorla Skyote Yotkan Junu Gunisang Kongrayin Nyamnyong Tang Tongoms Gun Shadazat Enok ई नासुल गुन निजांग हनगेसला आकाशवाणी लेने संचिला पुलिंजिक ताइन जुनि सेज निशुर सक्षी की जगह जमनिंग स्टील दनी योग की जगह से जचे जनों तालो ग्यागर नंगा जमनिंग स्टील दनी योग की जद गो छे जोस पो कोल कते नंगा टलिक जचे जनों यांग श्रीलोन नरेंद्र मोदी ई डिग्री में नंगा खाक थुसा जचे जनों इन जे सेज निशुर सक्षी की जगह जमनिंग स्टील दनी योग की जगह से चेस तंग डेलते टड़े गुनी स्कोर ला स्कैरजिप चाचिज ला श्यामी अर्जोंसपुन कुंजे जंगमत लास्कुंग सोसेर पुनबो गंतंग यम पोत सोसपा जिक बोदा जातेनो इतु अर्जोंसपुन इस श्याम युलजों सिनांगा गोमा जिक रंग अर्जों एल्दानिका योग एजाक सिचेस इन खान स्कोर ला ठोस तो गजा दिन जिक ई डिग्रीम बो ट्रांसपो लु शुक चेज ला लास्कुंग सांगमे रोगतेल तंग यम पो छला जा चेज ला शेचला जातेनो इन तु लास्कु जब कुंजे आंगमस योग जाचिज बो मिमांस कुनि लुस तंग सेम निस्को ए खमजदे ट्रांसपो बोर्से जिफिया मा खाक्षान इन खान स्कोर ला शरा जा दिन जिक ई जगा लास्कुंग सांगमे पोनबो तंग लाचित पगुन लोपटा सोजे लोपटु गुंतंग मीमा समा समा खाक थु शुक्चेजला लापचा सला जातेनो महाबुद्धि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेर सोना से गदांग ने फरला जमनिंग स्टील दन योग ई जक तंग रेलते अर्जुन जक चेगी योग इर गस्तन गुजु सोंस्तनो इतु सोजुंगी इरगलम तंग स्केले नस्का गलोन पोजोन बा हर्ष मल्होत्रा स्केबजे थुक्सा जिंपोची मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग ई नेस्तन पजुरबा डॉक्टर आई वी बसा वरादी तंग बेंगलुरु महाबुद्धि सोसाइटी ठीपा कसप्पा थेरेरा थेते अमेरिका फ्रांस इजराइल श्रीलंका तंग ताइवान थेते कुंडनपा मंगपोजिक एथुसा जातेनोक इतुस सोजुंग लोनपो सुंगशा चलेंजिक मिमास कुनला जक्तुंग मिसे नंगा योग जाचे सी लोब्स जाचे ला लपचा साला जा
1: हमारे स्वास्थ्य को अगर ठीक रखना है तो प्रतिदिन एक नियमित समय पर एक नियमित समय को लेकर के योगा की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। बहुत से लोग जानते भी होंगे पर अधिकांश को ये जानकारी भी शायद ना हो कि हिमालय में जो हमारे सन्यासी रहते हैं बर्फीली जगह पर भी योगा के कारण बिना किसी गर्म कपड़ों के या हीटर्स के या आग के बहुत अच्छे से रह पाते हैं और उसका कारण भी केवल और केवल योगा ही है और उसके कारण से ही उनकी आयु भी 100 वर्ष से भी अधिक होती है और हेल्दी होकर के अपना जीवन जीते हैं क्योंकि योगा में स्वास्थ्य के साथ साथ जो अध्यात्म छुपा है जो मेडिटेशन है वो आपके शरीर को मन को मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही वेलनेस की तरफ हमें लेके गए हैं तो मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ योगा को अपने जीवन में उतारिए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहकर के एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे।
0: लद्दाख पुलिस सी हेडक्वार्टर ने लप्तन स्पेल का नाम जिन चंथांग एस पी जहीर आबास जाफरी उजुक से नंगा जखनी सी एस पी ओ रिक्रूटमेंट ड्राइव जी कुशुला जाते नुक इतुज और जोंसपोन नीतीश राजोरा चीफ ऑब्जर्वर इसुल लजुक से रिक्रूटमेंट सिरका गुनी स्कोर ला जिक्स तोक साथ देना जाते नुक ई रिक्रूटमेंट एंड ड्राइव नंगा चंथांग लजों सी गमील सोसो ने लदम्स और रिल्तोस पर गेचू लागजम खाकथू सा जाते नुक लिकिरी एस डी एम ग्यूरमेट नमग्याली लाभस्तों नंगा अलची गमीली नंगा ड्रग्स इज नस्क्यों को निस्कोर ला हागोस पेलचे से डिग्रीम जिगी टाड़ी के जाते नुक इतु साइकेट्रिस्ट डॉक्टर टाशी खम्स खालात से खाकुरपा एस एच ओस कर्मा आंगचुक फोरेंसिक लस्कों से थुजमी तंग ससपुल और जोंका गई खम्सदे तंग शीस पंदे लस्कों से लाशित पगुनिस जाजोम स्क्यो तेतखान गुनला ड्रग्स इज नस्क्यों गुनी स्कोर तंग टीम सी थोक ने लसिस नासोक ट्रेन उत्खान गुनी स्कोर ला इशारा जाते नुक लेर मकमी जुर्बा गुनी सोसपे ठीपा सुनम मुरुप सोसपे लसान पगुनी छोक्स ने इंगे थुप मकमी ख्योतों हवलदार عبدل رحمان ہن میں لٹرونشس پہ گتھک چیز کے مون جو زتنک یانس کجبس عبدل رحمان اس لو چبدن گیگر آم فیا جبس توکس جوس ترتنگ نے آئبیکس ہاؤزنگ کوآپریٹو سوسائٹی لسان پاجی گرس اللہ مقمی زربا گیب کیا زما سکیت الاٹمن زچے تھوکا کھک چھنمو یوت خان گن ٹن زتنک ممبئی نگا دان پھرلا ایم آئی ایف ایف یگنا ممبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول گزک سنستنو یکما اردن سپر ڈلچے چن ای لوگین ارگاستوں نے رنگسلا زملی کھاک سوسو نے ڈاکیومینٹری شارٹ فکشن تنگ

0: animation ni lokngan gun zigra pulinjik tanok le lunchin kan gyu te ladakh si nasul gun hato chu sot or gu ni me chu sot ni stans karma khap chu nga phito chu sot nga tang phito chu sot or dun tans karma chu kun ka sanchil la pulinjik tanok mimans kun is ladakh si nasul gun facebook youtube tang x kun ikang AIR news le gyu tang san tup che jote no आकाश फनी लेनी ताश नसुल थोन का सतंगी जरांग इस डेलचा सनजात
1: तावा जंगपो योंग गोशिस तंग सम्लो जंगपो योंग गोशिस पो रंग चिकपे फ्यामान पा जन्मा गुल्लंग रोक्स थुप चुगानोक samlo zangpo tang thupchispo shukshigi nok cholta mangpo shigi donglen chuchisina roks tang khani shukshigi nok ebeton dak ngosma bo nangmet chuchis ya skala se nazluk shig jungna tebo yong ma chuga borchis se phemano ibo samlo gyala yerket tangchis ne sems tang lusi khamste tang chisa narkune gyale pheno samlo zangpo tangches ne skala se tusla ishtal bo gyute donglen cho thupches tang tenanga gyurcha gyospa khonches se nuspa yono kabejas de semdum nyun chaches jipchu de nanga samlo zangpo tangches ne stopchuk sma gela chaches thakshet nyun shki zume jikspa nyun tang mitse jingmo lushes tang delen jik tang no samlo zangpo tawa zangpo yarket tangna ya tawa samchul chungun tang semdom gun selche se nanga jokh tangano samba zangpo tangna skala se selthabs biano spejiga lamjiga chen yotna lam gaxte yot khan gyus chana ibo gaxkil jige chulla manpa lobjung jige tang selthabs jiga tana gala chachesno Jangjin inkanbo ha gojes tang donglin joches spejiga story thongna tebo jangjin chik inkan kabeka sem mashkuala ngospo mankhani jewa mabora samlo gyala tangyampo tangpe thokne skaps phingoshe sino jangnanga samlo ngan pas kiches nyun joches namjik ngiranga semse nanglok ne skat kaxpo inkan chik bingatna tebwe ngortak choches yang tebu zangpe toga gyurches sundus cho gushese no. Tebu zangpo yongches ne pantoks janyang mangpo chik libano. Ibe jas de jantang nyampo del gyala chaches ezelen nyun chaches jantang nyampo lase tokne indo ya rang sose tokne innang gyachane tokne rokstel bor tubano. Kalte samlo bo samba nganpe kaps de metna samlo soma skala se seltaps gyala tang jang mikjul choksla lepche sina roks tangano. Tawa zangpe jaste mitse lamo tang ngu yangmo chan lusano. Ibe jaste nam jigang mitse lame nanga gakshkil yongna shkepche se kyut yongano. Samba zangpo chan jigi notul gun lapcha tang jang shkirla yongche se skap shige chullal tano. Dus nam jigang samba soma tang gyurcha tangche se nuspa tang ldan khan yo ano. Diring ishak inanga chatme de skap se ltawa ka chalak peka rang vang yot teka nangstak sporches cholta gun rgyala meka yung khan irdua jige chulla ltaches martoks gaxkil jige chulla mirtaches. Chalak chun jig inang katin chorches tang naskap chun jige ka gawas keches. Transmedi tharkele kyudyongches yang tush gun la nga nyan khan bo nge gyala chochesin yang tebo gyala jik chochesi samba yungna mitse rangjan changme pia shkitpo yungchesina roks lepchesinok aga shwanilin da dilchaton.
2: Nga je aga shwanilin e jinjik tangin. Kasata le ngin to sanazad rigrim pulkan jingme dangchuk.
3: লিঙ্গিন থে ডিগ্রিম সংকলঙ্গস লা জুলে সংকলঙ্গস দং ইয়াং না ছিলজা জুনেছিস চোঙে জাগা জামলিং চিল দনে ইয়োগে জক সিচেস তং দেলতে দুঞ্জক চিগে গাস্তন দং মহাপুদি সোনাসিকা সিয়াজাতিন পিন দং ই জাগে স্কাপস স্কেলজিন লাসকুং সে লোনপো জুনবা হর্ষ মালোত্রা স্কুন্ডন সোতং স্টিভেস কুন্ডন স্কেপজে ডুপা থুকরা জিংবো ছে ছোক মিক্সালে স্কুন্ডনে থোয়া সোয়া রিকপে নিস্তনপা ডক্টর পদ্মা গুরমেত ইউনিভার্সিটি অফ লাদাগে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সাকেত খুশওয়া লাদাখ স্কাউটস রেজিমেন্ট সেন্টারে কমান্ড অফিসার কর্নল কোমল পান্ডে জানিয়া স্কুন্ডন মংপো জিকতং তালধান মিমাংস্তং লোপটোগুন জলজম স্কিউস দং ইস কাপস গাসু সিংশাত সালিন জিকতং গেন বিকু সঙ্গাসিনা
4: ইট গিভস মি ইমেন্স জয় টু ওয়েলকাম অল অফ ইউ টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভাল অফ ইয়োগা এন্ড মেডিটেশন 2026 here in the sacred land of Ladakh. We gather not merely to inaugurate the festival but to celebrate the vision a visions of peace in the world troubled by war, violence and conflicts, a visions of harmony in the world divided by differences, and a visions of inner transformation in the world increasingly overwhelmed by stress, anxiety, uncertainty, and suffering. You have traveled from different regions, cultures, languages, and traditions. Yet we are united by a common aspiration, the aspirations for peace, happiness, health, meaningful life. The world today has achieved extraordinary progress in science, technology, and material development.
3: Dang e zatgois cups yoga bo ngati michena kazui laglen jachen igunescola molinjiktang Dr. Gayatri Tiwari.
5: I have been to many international events, stood on prestigious stages, but here it feels like family. We are gathered here for soul connection. Yoga is not just about performing on mat, performing exercises. It's not about that. Yoga is much, much more than that. Yoga is all about a union of your body, mind and soul. Yoga is being in present. Yoga is being aware of your actions, using your words. A simple, for example, when you eat food, eating with awareness and consciousness, that is yoga for me. So today I feel that these mountains, what they teach us stillness. This sky above us, what it teaches us vastness. That's how yoga teaches us wholeness. So we all should, in our journey here, we should be healthier in our bodies, calmer in our mind, and stronger in our spirit.
3: Yang yoga tang delte sungshat salinjik tang, University of Ladakh Vice Chancellor, Professor Saket Khushwe zuk molajats.
6: Yoga ke saath, mujhe aisa lagta ki it's not, jase Guruji ne bataya, main toh unhi ki baaton ko ek baar phir se kehne ka prayas kar raha hoon, naya kuch bhi nahi bol raha hoon. Lekin isko kaise meaningful, jeevan ke har लक्ष्य को पाने के लिए इसको मीनिंगफुली कैसे हम अपने जीवन में लाएं, क्योंकि हम मुझे लगता है कि जैसे अभी ये 5-7 दिन हम करेंगे इसके बाद हम भूल जाएंगे. हम अपने जीवन में एक दो चीज़ें करते हैं, हम शायद अच्छी वॉकिंग कर लेते होंगे या एक दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर देते होंगे, कुछ लोग आगे बढ़ के मेडिटेशन भी कर लेते होंगे, लेकिन जीवन के हर पहलू में अगर हम रोज इस योगा को प्रैक्टिस करें. मैं भी नहीं करता हूँ, मैं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं तो टहल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसे अगर हम प्रैक्टिस में लेकर आए या अपने विद्यार्थियों को इसको सिखाएं, तो आजकल का जो वो अतिरेक है गुस्से का, जैसे रोड रेज हो रही है आजकल, आपने देखा होगा, मतलब गुस्से पे काबू नहीं है. हम बात करते समय भी बड़ा विद्रोह की भावना में आ जाता है, वी बिकम्स वेरी वायलेंट काइंड ऑफ थिंग. तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है हर स्टेज पे. वैसे तो मेरे पास फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अग्रेसिव गेम ज़्यादा सिखाते हैं, पावर गेम्स ज़्यादा बताते हैं. तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिलके अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो एक एक एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है. मैं एक बार फिर इस मंच से आप सभी को 17 तारीख यानी डे बिफोर डे आफ्टर टुमारो वी आर इन्वाइटिंग यू टू आवर कैंपस. समय की सूचना गुरुजी के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी.
3: योगा तंग डेलते सोवा रिकपा लस्कुंग से कजुक छगला जिक जदत इगुन सुगुन चुन जिक तंग इन्ना लस्कुंग से निस्तोन पा डॉक्टर पद्मा गुरमे.
4: When yoga was proposed as a international day for yoga, then almost it is unanimously supported by all the UN countries to declare 21st
7: USA yoga trip. So it is a proud moment for India. So we are thankful to Government of India, and on behalf of Ministry of Ayush, Government of India, I would once again like to thank Venerable Bhikkhu Sangha Sangati to pursue yoga and meditation in such a way and leading us in this week-long yoga festival. We have been part of this yoga festival since it is introduced, and we will continuously support you.

0: That is what we really need in this world and what we need in the dark also. So we have enough of educated people, and they are the one who is destroying the entire world. So now, in order to become a with your normal education or academy, now yoga is something like a medicine which can bring your mind from anger to a compassion, from a jealousy to a love, from pride to a, what you call it, humbleness. So I think yoga can play a very important role in every individual life. Many of you are maybe father, you are a mother, maybe you are holding important positions in the different offices, in different departments. I think now we all must come together and we more all must work as a unity to not only for selfish or to make your office better or your department better, but then I think more than that, we all must come together, work for a better future of our nation in the dark. That is what we all must think, not only about me. Ever since we are born till today, we have been counting every day, me. And me is the one who is destroying everything, yourself and the others. So we need to reduce saying me, and then we should think and work for the betterment of everybody. And that is the most important, that we all work must together. So to do that, we also can practice the yoga morning, and that can bring your mind and physical into a better and more positive. Thank you very much once again.
1: Dang iskaps ina jak arsiches tang delte skundon so skeldrin laskung se lonpo junba harsh malotre izuk molajats
2: na keval himalayas mein aur bhi bahut jagah par kyunki bharat sadhu santon ka desh hai rishi muniyon ka desh hai jo sadhu sanyasi rehte hain wo keval barfili jagah par bhi yoga ke karan bina kisi garam kapdon ke ya heaters ke ya aag ke bahut acche se reh pate hain aur uska वो भी उसका कारण भी केवल और केवल योगा ही है और उसके कारण से ही उनकी आयु भी 100 वर्ष से भी अधिक होती है और वो अच्छे स्वस्थ हेल्दी होकर के अपना जीवन जीते हैं। विश्व का टॉप रूफ कहे जाने वाला लद्दाख आज हम लेह में हैं और यहाँ पर एक हफ्ते के लिए ये योगा डे योगा के वीक को मनाया जा रहा है स्थानीय नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी तो इसको पिछली बार विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर भी लाखों लोगों द्वारा जो योगा किया गया था उसमें उपस्थित थे। इस बार भी उनके द्वारा इसी तरह का कहीं ना कहीं वो अवश्य जाते हैं योगा डे पर। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन भी करूंगा, विशेष तौर से जो हमारे यंगर साथी यहाँ बैठे हैं, कि आज से अभी से योगा को अपने जीवन में उतारिए।
1: दंग इना जक सिचस्तंग डेलते डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर बी के उषा, डॉक्टर दीपक हरके गुनियांग खोरंग उने थुक्सम गुन सोक्सप गुन चोजेट्स इना गुन तंग यंपो धीरे लेंगे थे डिग्री बोथोन ना गोस्प सलजत जुले।
3: Dakhsang ijirayin lengin to digrim sanazats. Digrim pulkanin pin jigmedang chok.

0: बैठा होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: TLI है ना।
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं TLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: dak sang ejra tam chos dor matang to pon sal kane doglorik sanazats nga je akashwani lene junjik tan to so chapi sting ne akashwani deli ne samachar sandhya news at 9 tang urdena nasul sanazat
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना

0: होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुवाई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमरीका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियॉन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied